इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

रोते रहे जिंदगी के समंदर में तूफान बवंडर खूब गए, सोचा था साहिल पे मुस्कुराएंगे किनारे पे आके।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM. RJ's

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
1: हाय, मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गोल To lift the trophy. Mark your calendar.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026। ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर with one goal to lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.
1: Assalamu alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye paya.
2: Eid, apno se gale milne ka din.
1: Hey, assalamu alaikum, assalam.
3: Eid, bachchon ki khushiyon ka din. अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन
2: ईद अमन और भाईचारे का दिन
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन
1: मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक
2: टीम रेडियो चिनार
3: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

वस रखना यार भले चले ना खोर भले असकना।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show, Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

टीम रेडियो चुनार की तरफ से आप सभी को ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना। दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक। मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
1: दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम। दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल की।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: फिर से तो फूल ले आया।
1: किसी की मैयत पे पड़े थे, उठा लाया।
0: किसकी मैयत?
1: मेरे जज्बातों की।
0: ओए होए पागल।

दिल की बात साहिल के साथ ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: पर हर मन जोत नहीं ओ कीती गोरनी।
1: मनराज बेशक मैं तेरे नाल बहुत खुश रहना सी, पर अपने घरदियां नूं दुख दे के मैं तेरे नाल नहीं रह सकती। अज तो बाद

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
4: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगांव लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गोल To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam, Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogaon, Lone Beauty Care Sogaon, Cricket Talk Show. Media Partner, TRK News Kashmir, Nasha Mukt, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket and cricket. Official Radio Partner, Radio Chinar 90.4 FM.
1: Assalamu alaikum, assalam. Eid ka hai yaro ye payam.
2: Eid, apno se gale milne ka din.
1: Hey, assalam alaikum, assalam.
3: Eid, bachchon ki khushiyon ka din. अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन
2: ईद अमन और भाईचारे का दिन
4: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन
1: मुबारक ईद मुबारक
2: टीम रेडियो चिनार
3: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 30

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nashamuk, Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आए थी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
2: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नियामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
4: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक। छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
0: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ਨੱਚ ਲਿਆ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਘਰ ਚਲੀਏ
1: हाय मैं हूँ आरजे ज़ूस
2: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा
3: हाय मैं हूँ आरजे असरा
4: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन आरजे

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: है।
1: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
2: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना। दिल की बात साहिल के साथ, साहिल के साथ। Only on Radio Chennai 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन
1: रेडियो चुनार

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेलैंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गोल To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner Radio Chinar 90.4 FM.
3: Only on Radio Chinar 90.4. I feel good. A new vibe for the lovers of Western music with me, RJ Zeus.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गो To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
2: अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पया।
3: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
4: बच्चों की खुशियों का दिन।
5: ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
3: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
6: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
2: मुबारक ईद मुबारक।
3: टीम रेडियो चुनार
4: की तरफ से आप सभी को
3: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: टीम रेडियो चुनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।
2: नशा मुक्त लोला T20 क्रिकेट कप 2026 ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स क्लब चंडीगाम लोला इन कोलैबोरेशन विद स्वेल एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कुपवारा अंडर द थीम नशा मुक्त भारत द बैटल ऑफ क्रिकेटिंग जायंट्स 32 टीम्स फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर विद वन गोल To lift the trophy. Mark your calendar for this knockout T20 Cricket Cup. Tournament is being played from 18th May 2026 onwards at historic sports stadium Chandigam Lola. The tournament is sponsored by Quality Healthcare Hospital Kupwara, Lazzat Spices Kashmir, Study Cafe Lola, RR Trading Company Sogam, Lone Beauty Care Sogam, Cricket Talk Show. Media Partner TRK News Kashmir, Nasha Mukt Lolab T20 Cricket Cup 2026. It's all about cricket, cricket, and cricket. Official Radio Partner. Radio Chinar 90.4.

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक।
0: टीम रेडियो चिनार
1: की तरफ से आप सभी को
0: ईद मुबारक।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद अपनों से गले मिलने का दिन।
1: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
0: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।

0: ईद बच्चों की खुशियों का दिन। ईद अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होने का दिन।
1: ईद अमन और भाईचारे का दिन।
2: ईद सबसे ईदी समेटने का दिन।
3: मुबारक ईद मुबारक।
1: टीम रेडियो चुनार
0: की तरफ से आप सभी को
1: ईद मुबारक।

Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करारा जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, रातें, सुबह, दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना, दर्द, हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे, अरे, लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।

0: ओ सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: किशोर बचाओ, ओ मुए, ओ मुर्गे, ओ कौवे, पीछे पीछे आते हो क्या दिल के चोर, मान जाओ वरना मचाऊंगी शोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, ओ गोरी, ओ नटखट, ओ खटपट, ओ पनघट, ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़,
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना, हाय हाय मीठे बहना, हाय हाय।

0: ये साहब माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुक्तम में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और हमार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की और
2: रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की
0: मुश्किल

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: ले आते हैं
1: मेरी जूती से।
0: जूता पॉलिश करेगा, आह जूता पॉलिश करेगा, लेकिन तुम पर मरेगा। चाहे ये जमाना कहे हमको दिव...

0: वाहरे मजनू
1: लैला लैला करेगा लैला ओए लैला लैला लैला करेगा ठंडी आहें भरेगा चाहिए जमाना कहे हमको।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।

रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।